संत कै दुख सर्व जन पाए संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए। संतन कै दुखन तृष्णा मैं जलै संत कै दुखन सब को छलै संत कै दुखन तेस जाए संत कै दुखन नीच निचाए। संत तो की गाथाओ को नाहे नानक संत पावे थाए पिगत पाए। संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक खिन टिकन न पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक आरतहीन संत का निंदक दुखिया अर्धीन संत के निंदक का सर्व रोग संत के निंदक का सदा विजोग। संत की निंदा दुख में दुख नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख। संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी के सह का नहीं मित संत के दुखी का डान लागे संत के दुखी का सब त्याग। संत का दुखी महंकारे संत का दुखी सदा बेकारे संत का दुखी जन्म मरे संत के दुख न सुखते ठरे। संत के दुखी का नाही ठाव नानक संत पावे तालय मिलाए। संत का दुखी अध बीच ते टूटे संत का दुखी किते काज न पहुंचे संत के दुखी को ध्यान फरमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए। संत का दुखी अंतर ते थोता जो सास मिला मृतक लोता संत के दुखी की जड़ किछ नाहे आपनी विजा पही खाए। संत के दुखी का बना राखन हार नानक संत पावे तलै उबार। संत का दुखी यो बिन लाए जो जर विहून मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा ने राजा जो पाव का इधन त्रापे संत का दुखी चुटै खेला जो वार्तर खेत में दुहेला। संत का दुखी तरन ते रहत संत का दुखी सदम त्या कैत किरत निंद का तुर ही पया नानक जो तुस पावे सोए थे या। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को तर गह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहगाइए संत का दुखी न मरे न जीवाइए। संत के दुखी की पूजन आयासा संत का दुखी उठ चढ़ रासा संत का दुख न दुष्ट कोय जैसा पावे तैसा कोई होए पया कीर्तन मेटे कोय नानक जाने सजा सोए। साब कर तिसको करने कार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उसत क्रोध रात तिसै त्यागो सास ग्रास साब कछ वर्त तिसका किया।

निमख न बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। सो कहो टल गुर सेवी, अहनिस सहज सुभाई, दर्शन परसे आए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसानू दी, नूर अरसों कुरसों चटी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहंदै साहो, जिस पास बैठिया सोही है, सब नांदा वे साहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

मां क्रोध विकराल कभू सर्व की हो तरवाल कभू होए भैवड़ राजा कभू भिखारी नियत का साजा कभू अब कीर्त में आवे कभू भला भला गावे जब रवरा कहत भी रह गुर प्रसाद नानक सच कह कभू होए पंडित करे बखियान कभू मुँह तार लावे ध्यान कभू तट तीर्थ स्नान कभू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कभू गीत हस पतंग हो जिया अन कुन भर मैं भर मिया नाना रोज सागत खावे चुम प्रभावत वन चावे योत

कूड़ करण करें हो तारे श्रम पावे सगले पर थारे अनगत बसया करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर फिरे वितार अनक जतन कर आत्म निद्रव हर दर गे को कैसे गवे।

मानु की टेबड़ सब जान देवन को कै भगवान जिसके दिया रह गाय बहुत न तृष्णा लागे आए मार रखे को आप मानुख कह किश ना ही आत तिसका हुक्म बुढ़ सो गो तिसका नाम रखन टप रोय सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन ना लागे कोय हो जित मन में कंडनकार कर मन मेरे सत बिहार निर्मल रसना अमृत भी हो सदा सुला कर लै जियो नैनो बे ठाकुर का रंग सह समण सह सत्संग चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटै पावित पिय हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दर गै नान गुजर मथा बड़ भागी तेज न जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम ना जोग रै विचार से तनवंत गने संसार मन तन मुख बोले हर मुख सदा सदा जानो ते सुखी को एक एक बिछाने तो सकिए सोजी जाने ना सुन सका मन मान्या नानक तन है निरंजन जान्या गुर प्रसाद अपना सुजस की जानो जिसना पुजै सा संग हर हर

अविनाशी ब्रह्मन में राख मन की तो प्रीत त्याग दुस्त पर नहीं किस को सर्व निरंतर को सोया पे बिना या पे दान गैर गंभीर गैर सुजाना।

गुरपुर कीति पूरी, प्रभ रव रहया भरपूरी, खेम कुशल भया इशनाना, पार ब्रह्म विटो कुर्बाना। गुरपुर कीति पूरी, प्रभ रव रहया भरपूरी, खेम कुशल भया इशनाना, पार ब्रह्म विटो कुर्बाना। गुर के चरण कवल रिद धारे, बिघन न लागे तिलका कोई, कारज सगल सवारे रहाओ। मिल साधु

प्रभ अपना बिरद रखाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्रसाद संघ जी परिवार वालों बेटा अनाज सिंह के जन्मदिन की खुशी में मुख रख के सतगुरां की सुखमनी साहिब की पाठ की सेवा दीवाना की सेवा लई गई। सतगुर कृपा करन समूह परिवार सच्चे मेरा प्रयास रखन, बच्चे नूं लम्मी आयु बख्शिश करन, दरों करों गुरसिखी जीवन ते नाम बाणी दाता बख्शिश करके अपने चरणा कमलों जोड़ के रखने अरदास सतगुरां दे चरणा विच है जी। हुण आप जी ने देगा प्राप्त करके परिवार वालों नीचे लंगर हाल विखे चाह के लंगरों का प्रबंध किया गया है जी। आप जी ने लंगर छक के जाने की कृपालता करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

तेरा अंत न पारा वरिया, राग आसा महला चौथा सो पुरख, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन।

सर्वरडय पहिले निवासा पाणी पावक तिन्ह किया पंक जो मोह पग नहीं चालै हम देखा तह डूबियले मन एक न चेतस मूढ़ मना हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हों जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की।

गोविंद मिलन किए हैं तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग भव जल तरन कै।

मोर अच्छा निज कर दय करिय सब बैरन को आज संगरिय पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा।

हमारे मारिया है, आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया, हुजो सदा हमारी पच्छा, श्री अस्तुज जू करिया हो रक्षा।

दुष्ट दुख ते लेहो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता, अंकिल बिक सगल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जब भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई। अड़िल सुने गुंग जो याही, सुरसना पावई, सुने मूढ़ चित लाई, चतुरता आवई, दुख दर्द पाव निकट न तिन नर की रह। हो जो या की एक बार, चौपाई को कहै चौपाई। संबत सत्रह है सहस पणिजय, अर्ध सहस फुन तीन कहिजय, भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। ओ राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। सिरियस पान कृपा तुमरी कार,

चित न है तो चित ले, निस दिन में प्राणी छिन्न छिन्न औन बिहात है, फूटे कट जो पानी छिन छिन औद बिहात है।

0: राष्ट्रपति
1: जय मात पिता सुतमित न पाई मानुहा नाम तेरे संग सहाय जय माँ प्यान दूत जमदल है तय केवल नाम संग तेरे चले जय मुस्कल होवे अत पारी हर को नाम खिन माहे उदारी अनेक पुने चरण करत नहीं तरे हर को नाम कोट पापर हरे गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हो सुखिया लाख करोरी बंधन पर है हर का नाम जपत निस्तर है अनेक माया रंग देखना बजावे हर का नाम जपता गावे जे मार गे जात अकेला ते हर नाम संगोत सुहेला ऐसा नाम अन सदा त्याय नानक गुरमुख परमगत पाई है छूटत नहीं कोट लखबाई नाम जपत है पार पराई अनेक बिघन जाय सिंगार है हर का नाम तत्काल उदार है अनेक जोन जन में मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हो मैला मैल कबुना तोवे हर का नाम कोट पाप खोवे ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइय साध के संग जे मार के गने जाय न को सार का नाम हर संग तोसा जय बैंडे महान दुख बारा हर का नाम संग उजियारा जाम बन तेरा को नासियानु हर का नाम ते नाल पछानू जय महा प्यान तप्त बहु काम ते हर के नाम की तुम ऊपर शाम जहाँ त्रिखा मन तुझा कर कह ते नान घर हर अमृत पर के भक्त जना की बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औख साधक मात हर जन के हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंगे के नानक जन कै बिरत विवेक हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परे न पंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाही ब्योग जन रहता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के मालिक जी ना हर तन जन को आप रब दीना हर हर जन के ओठ स्थानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाध नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपे हर का भगत प्रगट नहीं छपे हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे पार जाते ओ हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सावते उत्तम हर की कथा नाम सुनत नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिदवस है संत प्रताप दूत सब नस है संत का संग बड़ भागी पाई है संत की सेवा

सप्त्यान खट सासत समृत विख्यान जोग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया सगल त्यागपन मध्य फिरया अनक प्रकार किए बहु जतना पुन दान हो मैं बहुरत्ना शरीर कटाई हो मैं कर राती वर्त नेम करे बहु पाती नहीं तूर राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौखंड पृथ्वी फिर चिरजीव महा उदास तपीसर थी वह अगत माही हो मत प्राण कनक असर हैवर पूमदान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मारिज संजम अत्साधन निमक निमक कर सिर कटावे तो भी हो मैल न जावे हर के नाम समसर कछ नाही नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए मन कामना तीरथ दे छूटे गर्भ गुमान न मानते हुटे सोच करे दिनस अर रात मन की मैल न तनते जात इस देही को बहु साधना करे मानते कबू न भिख्या टरे जल तो वह बहु दे अनित सुत का हुए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ओझ नानक नाम उदरे पतित बहुमोज बहुत स्यानक जम का पो व्यापे अनक जतन कर तिस्ना त्रापे पेख अनेक अगन नहीं बूझे कोट उपाप दरगह नहीं सीजे छूटस नाही ऊब पयाल मोहे व्यापे माया जाल अवर करतूत सगली जम डाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जपत तुक जाए नानक बोले सह सुपाए चार पदार्थ जे को मागे साजना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लोरे सा संग ए हो मैं छोरे जे को जन्म मरण ते डरे साजना की सरनी परे जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रदान सा संग जाका मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गनिय सप्ते ऊंचा जाका मन हुए सगल की रीना हर हर नाम तीन कट कट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल शिष्ट साजना सुख दुख जन सम दिष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निर्तन को तन तेरो नाओ निथावे को नाओ तेरो थाओ निमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देवो दान करण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गतमी जानो आपे आपन संग आप प्रभराते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर न जानस कोए सर्व तरम मैं श्रेष्ठ तरम हर को नाम जप निर्मल करम सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया सात संग दुर्मत मल हिरा सगल उद्यम मैं उद्यम फला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जसुन रसन बखानी

बिरदपया ऊपर साकसेन मुख अपया को बैठ को देन ए निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्श लियो तो नानक सीजे जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसे सुत प्राथमित बंता संग हसे जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदायी पवन पावक अमूला जे प्रसाद बोल के सब रसा सगर सामग्री संग साध।

प्रभ आपे आद अंत जो राखन हार तिस्यो प्रीत ना करे गवार जाकी सेवा नव निवृत पावे तास्यो मूरा मन नहीं लावे जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावे दरगे मान तिसे बिसारे मुक्त आजान सदा सदा ए पूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचय साध सोर झूठ संग मचय जो छड़ ना सो अस्थिर कर माने जो हो वंसो दूर पराने छोड़ जाए तिसका शरम करे संग सहाय तिस पर हरे चंदन लेप उतारे तोय गर्द प्रीत बसंग संग होए अंत कूप में पतित बिकराल नानक काट लेहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेक अंतर मल माया छपस नाही कच करे।

0: जय कथा अष्टपदी
1: साथ के संग खूब जल होत साथ संबल सगली होत साथ के संग मिटे अभिमान साथ के संग प्रगटे सुज्ञान साथ के संग बूझे कर मेरा साथ संग सब होत निबेरा साथ के संग पाए नाम रतन साथ के संग एक ऊपर जतन साथ की महिमा वर्णय कौन प्राणी नानक साथ की शोभा प्रभु महे समानी साथ के संग अगोचर मिले साथ के संग सदा परकुल है साथ के संग आवे बस पंचा साथ संग अमृत रस पुंचा साथ संग होई शक्ति रेन साथ के संग मनोहर बैन साथ के संग न कंठ उतावे साथ संग अस्थित मन पावे साथ के संग माया ते पिन साथ संग नानक प्रभ सुप्रसन्न साथ संग दुश्मन सब मीत साधु के संग महा

साथ के संग ना कब भूटावे, साथ के संग सदा सुख पावे, साथ संग बस अगोचर है, साधु के संग अजर सहे, साथ के संग बसे थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे, साथ के संग दृढ़ है सब तरम, साथ के संग केवल पार ब्रह्म, साथ के संग पै नाम निदान, नानक साधु के कुर्बान, साथ के संग सब कुल उतारे, साथ संग साजन नीत कुटम निस्तारे, साधु के संग सो तन पावे, इस तन ते सब को वरसावे, साथ संग धर्म राय करे सेवा, साथ के संग सो बासुर देवा, साधु के संग पाप पलायन, साथ संग अमृत गुण गायन, साथ के संग सर्व स्थान गम, नानक साथ के संग सफल जन्म, साथ के संग नहीं कचकाल, दर्शन पेटत भोत निहाल, साथ के संग कलुकत हरे, साथ के संग नर्क पर हरे, साथ के संग इहा उहा सुहेला, साथ संग बिछरत हर मेला, जो इच्छे सोई फल पावे, साथ के संग ना बिरसा जावे, पाठ ब्रह्म साध रूप बसे, नानक उदरे साध सुंदर से, साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग ना मन ते बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे, साध के संग लगे प्रभु था, साधु के संग कट कट बीता, साध संग पई आज्ञाकारी, साध संग कट पई हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेते संजोग, साथ की महिमा भेद न जाने, जेता सुने तेता बख्याने, साथ की उपमा तय गुण के दूर, साथ की उपमा रही पर पूर, साथ की शोभा का ना

ब्रह्म ज्ञानी के सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी के तृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुक्ता। ब्रह्म ज्ञानी का पूजन

ब्रह्मज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी के गरीबी समाहा, ब्रह्मज्ञानी पर उपकार उमाहा।

0: राष्ट्रपति
1: कई कोट हो पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन भर में उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपि स्रोते कई कोट आत्म ध्यान तार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम त्यावे नान करते का अंत न पावे कई कोट पय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट किरपन कठोर कई कोट अपिघात मनिकोर कई कोट पर दर्भ को हिरै कई कोट पर दुख न करै कई कोट माया शरमाहे कई कोट परदेश पर माए जीत जीत लाभो तित तित लगना नान करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पात्र वृक्ष निपजाए कई कोट पवन पानी बसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सुर नखत्र कई कोट देव दानम इंद्र सर शतर सगल समगरी अपने सुतार है नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद पुराण सिमरत शास्त्र कई कोट किए रत्न समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वरण थीवे कई कोट जखर किनर पिसाच कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच सावते नेरै सबूते दूर नानका पलप्त रिहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्म जीव मरै कई कोट बहु जोनी फिरै कई कोट बैठती खाए कई कोट काले थक पाए कई कोट किए तनवंत कई कोट माया में चिंत जय जय पाणा तह तह राखे नानक सब किस प्राप के हाथे कई कोट पै बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ को खोजनते अत मैं पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिलो प्रभ विनास कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हो आप सो प्रसन्न नानक तेजन सदा तन तन कई कोट खाणी हर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हो अवतार कई जुगत की नो विस्तार कई बार पसर उपासार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट की ने बोपात प्राप्त हो ब्रह्मा समात ताका अंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन्हो अवतार तम प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर पै सा सधी जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्म रास सुख सह समावे आप

मैं था पू था पन्हारा, अंत नहीं किछ पारा वारा। हुक्मे तार अधर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै। हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार। कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक सब में रहा समाई।

आप रचा सब आप पे रचा सबके साथ आपकी नो आपन विस्तार सब कछ उसका ओ करने हार उसते बिंद का किछ होए थान थन अंतर एके सोए अपने चलत आप करने हार कौतक करे रंग अपार मन में आप मन अपने माए नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वखियानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना पला पला पला तेरा रूप अट सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बानी कट कट सुनी सरवण बक

तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उतरे सो

रूप सत जागा सत अस्थान पूरत पूरक सत के बल प्रदान करतूत सत सत जाकी बानी सत पुरक सब माए समानी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सपली सत नाम प्रभ का सुखदाई बिस्बा सत नानक गुरते पाए सत बचन साधु उपदेश सत तेजन जा कै हृदय प्रवेश सत निरत बुझे जय कोय नाम जपत ताकी गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसके सृष्ट सो करने हार अवर न बूझ करत विचार करते के मित न जाने किया नानक जो तिस पावे सो वरतिया बिस्म बिस्म भय बिस्माद जिन बुझिया तिस आया स्वाद प्रभ के रंग राज रन प्रभ के रंग राज जन रहे गुर के बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जाके संग करे संसार जाका सेवक सो वड पागी जन का सेवक सो वड पागी जन के संग एक लिव लागी गुण गोविंद की।

चरण सत्सत परसनहार, पूजा सत्सत सेवदार, दर्शन सत सत वेखनहार, नाम सत सत त्यावनहार, आप सत सत सवतारी, आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभक्ता, सुरत सत सत जस सुनता, पूजन हार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जन मान्या, करण करारण तिन मूल पछान्या, जाके हृदय विश्वास प्रभाया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, पैते निर्भव होए बसाना, जिसते उपजत इस माहे समाना, बस्त माहेले बस्त गढ़ाई, ताको भिन्न न कहना जाई, बुझे बुझन हार विवेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभ का सेवक नाम के रंग, सेवक को प्रभ पालनहारा, सेवक कीरा खिन रंकारा, सो सेवक जस दया प्रभ तारे, नानक सो सेवक सास सास समारे, अपने जन का पर्दा टाके, अपने सेवक की सर पर राखे, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत राखे, ताकि गतमित कोई न लाखे, प्रभ के सेवक को न पहुँचे, प्रभ के सेवक ऊँचते ऊँचे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, नीकी कीरी महकल राखे, बसम करे लस्कर कोटला के, जिसका सास न काढ़त आप, ताको राखत दे कर हाथ, मानस जगन करत पौपात, तिसके करता बिरथे जात, मारे न राखे अवर न कोई, सरब जिया का राखा सोए, काही सोच करे रे प्राणी, जब नानक प्रभ लख बिड़ानी, बारम्बार बार प्रभ जपिए, पी अमृते मन तंत्र पिए, नाम रतंजन गुरमुख पाया, तिस किच अवर नहीं दिष्टाया, नाम तन नामो रूप रग, नामो सुखर नाम कसंग, नाम रस जो जंत्रता, निमंतन नामे नाम समाने, उठत बैठत सोवत ना, कहो नानक जन के सत्काम, बोहलो जस जेवा दिन रात, प्रभ अपने जन की नीदात, करे भगत आत्म के चाय, प्रभ अपने से रहे समाये, जो हुआ हो बस सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कहे एक न जानो, आठ प्रह प्रभ बसे हजूरे, प्रभ कहो नानक सोई जन पूरे, मन मेरे तिन की ओट ले, मन तन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सोजन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दरस सब पाप मिटावे, अवरस से अनब सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग,

जाचक जन जाची प्रदान कर कृपा देवो हर नाम सा जना की मांगो तूर पार ब्रह्मे सरदापुर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमस्यो लागे प्रीत भगत करे प्रभ की नतनीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रसार प्रभ की दिष्ट महासुख है हरस पावे बिरला कोई जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूर्व पुरुख नहीं डोलाने सुवर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साथ के संग परे सरन आन सत्याग अंत प्रगास अंदिन लिबलाग बड़ पागी जपया प्रभ सोई नानक नाम रते सुख होय सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मतलई जन को प्रभ होय दयाल सेवक किनो सदा निहाल बंधन काट मुख जन पया जन्म मरण तू ब्रह्म गया इस पुनी सरदा सब पूरी रब रया सत्संग अजूरी जिसका साथ इन लिया मिलाई नानक भक्ति नाम समाये सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे किया जाने सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाके सो क्यों बिसरे जे बिकते काटे जन्म जन्म का टूटा गाढ़े गुरु पूरे तत्ते बुझाया प्रभ अपना नानक जनते आया साजन संत करो हे काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुपावो आप जपो अवरह नाम जपावो भगत पाए तरिये संसार बिन भक्ति तन हो सीशार सर्व कल्याण सुख निदनाम बूढ़ जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नास नानक नाम जपो गुमतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मंथन अंतर ए सुहाओ नेत्रोपेक तरह सुख हुए मन बिकसे सा चरण तोये भगत जना के मंथन रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे करमया गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रहया सर्व समय प्रभ बक्सन दीन दयाल भक्त बच्छल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व घटा करत प्रतपाल आज पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपे सो हुए पुनीत भगत पाए लावे मनीत हम निर्गुणियार नीच अजान नानक तुम्हरी सर्व पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मुख पाए एक नमक हर के गुण गाए अनेक राज को घोड़े आई हर के नाम की कथा बन पाए वह भजन का पर संगीत रसना जपती हर अनीत पलिसो करनी सो बातन मंत हृदय बसे पूरन सब रंग।

तब कहते होता, जब तारी आपन सुन समात, तब बैर विरोध के संग कमात, जब इसका बरन चिहन न जापत, तब हरक सोक कहो किसे व्यापत, जब आपन आप आब्रम, तब मोहो कहाँ किस होवत परम, आपन खेल आप वर्तीजा, नानक करने हा न दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बन मुकत को किसको गनी, जब एके हर अगम अपार, तब नरक सुरक कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ सह सुपाए, तब शिव सगत कहो कित ठाए, जब आपे आप अपनी जोत तरे, तब कवन निडर कवन कत तरे, आपन चलत आप कर निहार, नानक ठाकुर अगम अपार, अविनाशी सुख आपन आसन, तह जन्म मरण को कहाँ विनाशन, जब पूरण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए, जब अभिगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, तब कौन छूटे कौन बंधन बाधे, आपन आप ही अचर्जा, आपन नानक आपन रूप आप ही उपर्जा, जह निर्मल पूरक पूरक पथ होता, तय बिन मैल कहो क्या तोता, जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तय कौन को मान कौन अभिमान, जय स्वरूप केवल जगदीश, तय चल छिदर लगत को कीस, जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे, तय किसे भूख कवन तृप्तावे, करण करावन करनेहार, नानक करते का नाही सुमार, जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माई बाप मित्र सुत पाई, जय सरब कला आपे परवीन, तय वेद कतेब कहाँ कौचीन, जब आपन आप उड़तारे, तौ सगन अपसगन कहाँ बिचारे, जय आपन ऊच आपन आप नेरा, तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा, बिस्मन बिसम रहे बिस्मात, नानक अपनी गत जानो आप, जह अच्छल अच्छेद अपेद समाया, उहां किसे व्यापत माया, आपस को आपे आदेश, तह गुण का नाही परवेश, जय एके एक एक भगवंता, तय कौन अचिंत किस लागे चिंता, जय आपन आप पतियारा, तय कौन कथै कौन सुन नहारा, बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा, नानक आपस को आपे पहुँचा, जय आप रचियो पर पंच आकार, तय गुण मै की नो विस्तार, पाप पुन तय पई कहावत, कौन नरक कौन सुरख बंछावत, आल जाल माया जंजाल, हों मैं मोह परम भय पार, दुख सुख मान अपमान, अनक प्रकार कियो बखियान, आपन खेल आप कर देखे, खेल संकोचे तो नानक एके, जय अभिगत भगत तय आप, जय पसरे पासार संत प्रताप, दुहू पाक का आपे तनी, उनकी शोभा उन्हों बनी, आपे कौतक करे अनध चोज, आपे रस पोगन निर्जोग, जिस पावे तिस आपन नाइलावे, जिस पावे तिस खेल खिला।

जात इस पावे ता श्रेष्ठ पाए अपने पाणे ले समाए तुमते पिन नहीं किछ होए आपन सुसब जलत परोए जाको प्रभ जी आप बजाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंतर सब दाके हाथ दीन दयाल नाथ को नाथ जिस राखे तिस कोई न मारे सो मुँह आदिस मनो विसारे तिस त जबर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ

स्वामी ओट पोट गुर प्रसाद ब्रह्म का नास नानक दिन में ए विसास संत जना का पेखन सब परम संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने सब बचन सब सर्व व्यापी राम संग रचना।

सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस पावेता करे विस्तार तिस पावेता एकंकार

नानक तिस जन आप बुझाए, सर्वभूत आप वरतारा, सर्व नैन आप पेखन हारा, सगल समग्री जागा तना,

सो ना ही बुरा, उरे कहो किने कच करा, आप पला कर तूत अतनी की, आपे जाने अपने जी की, आप साज तारी सब साज, ओट पोट आपन संग राज, ताकि गट मिट कहीं न जाए, दूसर होए ता सो जी पाए, तिसका किया सब परवान, गुर पर साध नानक ए जान, जो जाने ते सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ सोए, ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुख जिस हृदय भगवंत, तन तन तन जन आया, जिस पर सब जगत तराया, जन आवन का एह सुआओ, जन के संग चित

0: गुरुदेव गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत निरोधरा गुरुदेव सांत सात बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान वचन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जपुदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लगतरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्करा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लगतरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्करा
1: वाहे गुरु
0: जी का खालसा।

0: वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जी की फतेह।

जाकी सेव सिर सिद्ध साधक सुर असुर गन तरे ते तस गुर बचन सुन कन रे हुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर करे तरियो प्रहलाद गुर।

0: गुरु नानक निकट बसै बनवारी ते लहणा थाप जोत जगतारी लहणे पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले को दिया तिन श्री रामदास सोडी थर थप्यो हर का नाम अखे निध अप्यो अप्यो हर नाम अखे निध चहु जुग गुर सेवा कर फल लहियं बंधे जो चरण शरण सुख पावह परमानंद गुरमुख कहियं परतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण कर परणं सतगुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारण तरणं परतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण परणं सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारण तरणं।
1: जय

दिव्य दृष्टि कारण करणम सतगुरु गुर सेव अलक गत जाकी श्री राम दास तारण तरणम।

पुत्र जी, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसे आप ही चितवे, आपे चंद सूर पर गासा, आपे जल आपे थल थम्मन, आपे किया कट कट बासा, आपे नर आपे फुन नारी, आपे सार आप ही पासा, गुरमुख संगत सबै बिचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे नर आपे फुन नारी, आपे सार आप ही पासा, गुरमुख संगत।

0: सिव सला तेरी नाम मान विसावे
1: नाम जिनका मन वसया वाजे शब्द कनेरे
0: कह नानक सचे साहब क्या नाही का तेरे
1: साचा नाम मेरा आधारो
0: साच नाम आधार मेरा चुप कस गवाया
1: कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया
0: सदा कृपा निकित गुर विदो जिस दिए एवडियाया
1: कह नानक सुनो संतोष तो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो
0: वाजे पंचत कस पागे कस पाके शुद वाजे खला जे का तारिया
1: पांच दूत दवास कीते काल कंटक मारिया
0: तो कर्म पाए तो जिनको से नाम हके लागे
1: कहे नानक तस को